एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते

कौं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बतो तपाता शकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार ते आए है ताके काल निकट ने आए है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रैं तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो।

हरि हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविख शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौन

और समय अब तक तो आप जान गए होंगे कि द ट्यूसडे स्टार मंगल के दिन का जो अखबार है समय वो आपके अपने सपनों का जॉब दिलवा सकता है. जी हाँ, आपका ड्रीम जॉब, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी है समय, एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए है. ठेके आपको दिला सकता है, टेंडर्स आप भर सकते हैं. सो गवर्नमेंट जो मालूमात देती है अपने शहरियों को वो ट्यूसडे स्टार में मिलती है. नए मौके आपके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, माई गव का सेक्शन है इस अखबार में. 60 शिलिंग की कीमत है लेकिन बिल्कुल ये मुफ्त है आज के दिन. तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कौन मिस करेगा समझ जाइएगा. और जाके कहीं भी किसी भी सुपरमार्केट में, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स आपके पास हैं, हुडुमा सेंटर्स हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, सड़क पर जो वेंडर्स हैं, जो अखबार फरोश हैं, उनसे ले लें मुफ्त का. चंदाराना से, क्विक मार्ट से, चिकन इन, प्राइड इन, क्रीमी इन, पिज्ज़ा इन, क्रीमी इन, टोटल और ओला पेट्रोल स्टेशन से भी आपको मुफ्त. लाइब्रेरीज में जाकर देखिएगा मुफ्त की ट्यूसडे स्टार, उठा लें, आपका हक है.

0: अली भाटिया कहते हैं कि जब एक जो होती है सुई अ नीडल जब वह अकेली होती है तो पियर्स करती है, अगर इसको धागा मिल जाता है तो वो हील और मेंड करती है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपके बाद रंजन विनोद लंदन में हैं, तमाम फ्रेंड्स को याद किया है, कहते हैं कि योर फ्रेंड फॉर 26 years ऑन बेमिसाल, क्या बात है, बहुत अच्छे। जबीन हीरानी गुड मॉर्निंग परवीन जी एंड द वंडरफुल लिसनर्स, सुपर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एज ऑलवेज। लव्स छोटे ज़रूर होते हैं मगर उनके उनका असर बहुत गहरा होता है, एक नर्म जुमला किसी का दिन बना देता है और एक सख्त जुमला किसी के दिल किसी का दिल हमेशा के लिए दुखा देता है। बिल्कुल जबीन हीरानी, बहुत सही कहा आपने। और सलमा अहमद भी हैं,
1: लफ्ज छोटे जरूर होते हैं मगर उनका असर बहुत गहरा होता है, एक नर्म जुमला किसी का दिन बना सकता है और एक सख्त जुमला किसी का दिल हमेशा के लिए दुखा सकता है। शुक्रिया, सुबह का प्यार सलाम, सलमा अहमद किसुमो।
0: वही फॉरवर्ड था जो जबीन हीरानी ने दिया है सलमा अहमद, समय वो जो बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिलते हैं ना वो नहीं, आप अनयूजुअल ढूंढ कर भेजें। नीला शेठ कहती हैं, गॉड इज माय बॉस एंड आई एम हिज एम्प्लॉय, आई एम थैंकफुल फॉर माय सैलरी कॉल्ड लाइफ विद बेनिफिट्स कॉल्ड ब्लेसिंग्स। कहती उसने मुझे लाइफ दी है, ब्लेसिंग्स दी है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा का। नीला शेठ थैंक यू, गुड मॉर्निंग परवीन जी, हैप्पी ट्यूसडे टू यू। सभी लिसनर्स को आई रियली एन्जॉय लिसनिंग टू योर शो बेमिसाल अंदाज, आई एम लिसनिंग फ्रॉम नियरी। क्या बात है, तो क्या आपका नाम नहीं है नियरी वालों? है महेश कुमार शाह। महेश ये कल भी आपका मैसेज एक मिला था लग रहा है जी। सो महेश आई वेलकम यू टू बेमिसाल अंदाज, बदल गया आपने खामोशी तोड़ी है और बताया है कि आप सुनते हैं, कमाल है महेश, बहुत अच्छा लगता है रेगुलरली जो सुने तो ऑफकोर्स मेज़बान के लिए बहुत बड़ी ये चीज़ होती है।
2: प्रवीण जी आपने गाना बजाया, आप यूं ही आपसे मिलते रहे, ये गाना एक मुसाफिर एक हसीना का है, 1962 की मूवी है जिसको मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है और जिसकी धुन ओ पी नायर ने बनाई है। ये पहला गाना सुना, अच्छा गाना सुनाने के लिए आपका शुक्रिया। प्रवीण जी आपने गाना बजाया, मिलती है मोहब्बत कभी कभी, ये गाना फिल्म आँखें का है जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको शायर लुधवानी ने लिखा है और जिसकी धुन रवि ने बनाई है। ये गाना बाला श्याह पे फिल्माया गया है, उसके साथ ये मूवी में धर्मेंद्र भी काम कर रहे थे। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया। प्रवीण जी आपने गाना बजाया, मीठी से खेलते हो बार बार किसके लिए, ये गाना फिल्म पतिता का है, 1953 की मूवी है जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको शैलेंद्र ने लिखा है और जिसकी धुन शंकर जय किशन ने बनाई है। ये गाना कामिनी किरण पे फिल्माया गया है और उसके साथ ये मूवी में देवानंद आगा वो सब ने काम किया है। गाना बहुत अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: क्या बताओ, ये कामिनी कौशल ही थी, ये कामिनी किरण कौन थी? खैर प्यार अली शुक्रिया। और शबीर अहमद फ्रॉम लंदन, अस्सलामु अलैकुम, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ लता, सॉन्ग इन सच अ यूनिक वे, बिल्कुल सही जो अभी अभी आपने सुना है। सना बिफोर यू स्पीक, अच्छा ये जो फॉरवर्ड, एक और फॉरवर्ड मुझे मिला है जो सैली ने भी भेजा है, सना ने भी। सो समिन जो अक्सर भेजते हैं एक दूसरे को वो छोड़ें, वो भेजें जो कि आपको कभी किसी ने नहीं, आपने कहीं पढ़ा है, कहीं कोई कोट देखा है, अनयूजुअल है, वो मुझे अच्छा लगता है, वरना प्रोग्राम की स्टैंडर्ड गिर जाती है।

और समय ने एक खबर है चाइना से, मैंने कहा था मैंने आपको धोखे की खबर जरूर देनी है, धोखे की। समय चाइना के एक शख्स को, वो चाइनीज शहरी है बेचारा, अपना पूरा नाम भी नहीं दे रहा, अपना आधा ही नाम दिया है, उसको झटका लगा जब उसने एक अपार्टमेंट लिया, जो आजकल मॉडर्न अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स पहले कहा करते थे। तो समझने उसने रकम अदा कर दी, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, अपार्टमेंट 34वीं मंजिल पर था चाइना में, 34th स्टोरी पर था। जब कागजात तैयार हो गए, सब कुछ उनको मिल गया, सबूत भी मिल गया कि आपने ये 34th फ्लोर पर जो अपार्टमेंट लिया है, हमें पूरा पैसा मिल गया, वसूल हो गया, अपार्टमेंट आपका है, तो बड़े खुश थे। शेन उनका नाम, तो शेन बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार पूरी जिंदगी की मैंने पूंजी इस अपार्टमेंट में लगा दी, मेरा हो गया, मेरा नाम होगा। तो पता चला कि 34वीं मंजिल है ही नहीं, 34th स्टोरी है ही नहीं। समझ, जो इमारत थी उसकी आखिरी मंजिल 32nd थी, 32वीं मंजिल, माले आप कहते हैं ना, 32वां माला आखिरी माला था, इनको 34वें माले पर फ्लैट बेच दिया किसी ने। समिन चाइना के शेनजिंग सूबे में ये हुआ, शेन के साथ। कहते हैं कि वहाँ अक्सर ये होता है, क्यों? क्योंकि जो कानून है ना बेचने का, बनाने का, फ्लैट्स था, बिल्डिंग्स बनाने का, बेचने का, खरीदने का वगैरह, वो बहुत कमज़ोर कवानीन है चाइना में। तो बेचारे को पता नहीं हवा में कोई अपार्टमेंट दे दिया जो था ही नहीं।

और समिन परवीन भट्ट ने भी कॉल किया है, सैटरडे के दिन इनकी बर्थडे थी, तो हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड बर्थडे परवीन भट्ट। आपने कहा है कि एक बहुत ही प्यारा पाकिस्तानी गाना मैंने आगे रखा है। समिन, ये आवाज़ जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये महनाज की है, अनदर ग्रेट सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान, आपको पसंद आएगा ये नगमा। मैंने ये पूछना है कि 9 जून यानी आज रात, जी हाँ 9 जून है आज, तो समिन आज रात आपने क्यों आसमान की तरफ देखना है, शाम जाके बाहर आसमान में क्या ढूंढना है, क्या हो रहा है और बरसों के बाद होता है, फाइंड आउट करें कि क्यों हमने आज खास तौर पर आसमान में कुछ ढूंढना है, क्या है ये, क्या फिनोमेना है जो होने वाला है। और क्वोट ऑफ द डे आ गया मिस्टर एमएल विश्वकर्मा, जो फॉरवर्ड्स नहीं भेजते मुझे अच्छे अच्छे जो क्वोट्स हों। द मोस्ट पावरफुल वे टू हील समवन इज टू लिसन, डू नॉट थिंक, डू नॉट जज, जस्ट लिसन। पीपल स्टार्ट टू हील व्हेन दे फील दैट दे आर बीइंग हर्ड। कितना अच्छा कोट है एमएल विश्वकर्मा, आपने कहा है कि सुनना शुरू कर दें लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत खूब, लेकिन आज आसमान में क्या ढूंढना है आपने, क्या फिनोमेना है।

आवाज महनाज की और समिन बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हुआ करती थी बाबरा शरीफ आज भी जिंदा हैं लेकिन ऑफ कोर्स ओल्ड लेकिन इनकी फिल्म से ये हमने लिया था और अब देखते हैं कि हमारा आंसर सबसे पहले शनाज बट फ्रॉम तंजानिया मैंने कहा आज आसमान में क्या दिखेगा सही जवाब शनाज वेल डन और दूसरा जो जवाब आया है साथ ही शनाज बट के वो रीटा का है रीटा बहुत अच्छे आपने भी बिल्कुल सही बताया है कि क्या होने वाला है आसमान पर जबीन हिरानी ये भी करेक्ट और जो है रूपल आपने कहा है कि ये होने वाला इट्स अ कंजंक्शन विजिबिलिटी रेयर कंजंक्शन विजिबिलिटी हम बहुत कम होता है ये जो होने वाला आज आसमान पर आप भी कोशिश करें अच्छा भरत गंगाराम ने लंदन से कह दिया है कि ये एक महामिलन है हाँ बिल्कुल महामिलन होगा पर किसका ये बताना है आपने रसिला गुड मॉर्निंग जस्ट जॉइनिंग लवली म्यूजिक परवीन जी इन द स्काई इफ द स्काईज आर क्लियर वी मे कैच शूटिंग स्टार्स ट्वाइलाइट नहीं आज एक खास है ये आंसर नहीं होगा आज चिराग पटेल ने करेक्ट आंसर दे दिया है नाम दिए हैं उन सैयारों के समझ जो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ठीक है जो प्लैनेट्स हैं और सैली बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका और डियर परवीन जी आई कैन नॉट रेजिस्ट योर प्रोग्राम एवरी डे यू हैव सच एंड You have an art to present the songs for the audience. You compile and select the best songs to entertain the audience every day. It's a great honor to have you. Thank you so much. So I appreciate this. Aur aap hain Nalini Arsha. Thank you. Aur Nalini ke baad, ji haan, tasveer bhi bheji hai. Aaj raat jo aapne dekhna hai, uski tasveer bheji hai. किसने हमें कल्पना ने कल्पना बहुत धन्यवाद आपका और विजिबिलिटी ब्राइट ऑन ब्लिंकिंग प्लेयर हाँ रसिला आपने दोनों प्लैनेट्स के नाम दे दिए हैं दोनों प्लैनेट्स के बहुत ज़रूरी थे नाम और रितु गुप्ता करेक्ट आंसर द टू बिगेस्ट प्लैनेट्स इन द नाइट स्काई विल बी विजिबल जस्ट आफ्टर सनसेट समिन दो हैं प्लैनेट्स एक का नाम है वीनस याद कर लें दूसरे का नाम है जुपिटर समिन आसमान पर ये इतने करीब आ जाएंगे और आज रात आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ना आसमान में एक बहुत दो बड़े रोशन सितारे हैं सबसे ज्यादा रोशन और फिर ये एक दूसरे के करीब करीब करीब ऐसे जैसे कि एक हो जाएंगे तलत

0: मतलब हमारी जितनी छोटी उंगली है ना उतनी दूरी ही रह जाएगी, और ये इनका महामिलन होगा, ये देखने लायक नजारा होगा।
1: सो आप सबको देखना चाहिए समय, ये जुपिटर और वीनस का जो मेल है आप सब देखिएगा आज मगरिब के बाद।
2: हेलो प्रिय जी, वेलकम, सारे नु नमस्कार। तद आंसर है वीनस ते जूनियर जुपिटर ने कोले कोले आ जाना, इन्ने ब्राइट होएगी कि आपा नु लगेगा अपने अखा दे कोल ही ने, यही आंसर है। थैंक यू जी।
1: ऐसा लगेगा जैसे एक हैं, दो नहीं दिखेंगे, ऐसे लगेगा जैसे एक ही सितारा है, रोशन सितारा। तलत का गुजराती का गाना, वाह वाह भरत गंगाराम इन लंदन, बहुत इंजॉय किया है, बहुत अच्छे भरत। रमेश हरिया, आज रात को दो ग्रह का मिलन है क्योंकि फिल्म कोहिनूर का गाना, दो सितारों का जमीन पर है मिलन, ये आसमान पर होगा मिलन। ओके ठीक है, देखते हैं। और दिनेश शाह, गुड मॉर्निंग, टुडे इट विल बी विजिबल वीनस और मार्स, मेरे ख्याल वीनस और मार्स है, नहीं जुपिटर, जुपिटर और वीनस। आपने इतने ज़्यादा दिनेश बता दिया, नहीं दो ही हैं, जुपिटर और वीनस हैं, वो मिलेंगे एक दूसरे, कितने करीब आ जाएंगे, जैसे कि किंग चार्ल्स भी बहुत करीब आए हैं एक लीडर के, इनकी कल मुलाकात हुई है शाही तो समिन महल में, जिसके बाद मेहमान ने कहा है आपने हमारा बहुत साथ दिया है, राजा को कहा है किंग चार्ल्स को, आपका साथ हमारे लिए आयन क्लैड सपोर्ट है, मेहरबानी, मैं आपको जल्दी ही अपने मुल्क आने की दावत दूंगा, मैं चाहता हूँ आप हमारे मुल्क आएँ, हो सकता है इसी साल मैं आपको इनविटेशन भेज दूँ। तो समिन, किसने कहा है कि मेरे मुल्क आइएगा, राजा साहब आप मेरा साथ देते रहे हैं, देते रहिए प्लीज़, कौन है ये, किस मुल्क में ले दावत दे रहे हैं किंग चार्ल्स को आने की।

और समय कृष्ण सरोवर ने लंदन से कॉल किया है, कहते हैं कि हम चंद दिन पहले आ रहे थे, सफर कर रहे थे गाड़ी में, तो बेटे ने कहा अपने आसमान में कुछ देखा है? कहते मैंने कहा मैं देख रहा हूं। समझिए ये तीन चार दिन पहले ये एक दूसरे के नजदीक वीनस और जुपिटर आने लगे थे। कहने लगे इतने क्लियर नजर आ रहे थे, दमक रहे थे, शानदार मंजर था। ऑलरेडी आपने देख लिया, बड़ी अच्छी बात है। आरफा आपने कहा है ईस्टर्न या वेस्टर्न? कहते हैं कि वेस्टर्न होराइजन पर दिखेगा, पर आप देखें वो बहुत ऑब्वियस होगा, कोशिश करें। और यहां पर मैसेजेस जो आए हैं उनको पढ़ लेते हैं। Could you send me more details about? Yes, we'll tell you the details. ये कुछ और मांग रहे हैं, जरूर we'll send you the details। हमने समय हमारी टीमें बन रही हैं, करोगा होने वाला ईस्ट एफएम का, तो वो टीमें बन रही हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। और यहाँ पर हैं फर्स्ट करेक्ट कॉलर, कौन है अपना नाम लिखा करें, रीटा। वेल डन रीटा, आपने सबसे पहले बता दिया कि किसने कहा है शाह चार्ल्स मैंग, मैं ना आपको अपने मुल्क बुलाऊंगा। आप बड़ा अच्छा मेरा साथ दे रहे हैं। चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना, करेक्ट आंसर। सना बिल्कुल करेक्ट है। रसीला आपका भी आंसर दुरुस्त है। जबीन हीरानी करेक्ट आंसर। और जो मुनीर ने भेजी है तस्वीर, वो समिन जो आज का नज़ारा होगा जुपिटर और वीनस का, बहुत शुक्रिया आपका। भरत करेक्ट आंसर। और समिन अभी मैं दे देती हूँ आपको, बिकॉज एवरीबडी सीम्स टू हैव द करेक्ट आंसर। और वो हैं ज़ेलेंस्की जो है ना यूक्रेन के सदर, वो गए हैं मिलने। वो सारी दुनिया का बेचारे दौरा करते हैं, ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं रशिया के खिलाफ, बड़ी मुश्किल जंग है, पर उसमें यूरोपियन देश इनका साथ दे रहे हैं।

0: नीला शेठ ने भी आंसर दिया है गालिबन जी हाँ यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात की है सलीम मेहर हैं लंदन में
1: प्रवीण जी अस्सलाम वालेकुम सलीम मेहर फ्रॉम लंदन रियल ब्यूटी इज नॉट व्हाट द आईज कैन बिहोल्ड बट व्हाट द हार्ट कैन होल्ड व्हाट वी सी विद आवर आईज विल वैनिश समडे But what we store in our heart will live forever. Good morning, Pravinji, to you and all your lovely Bay Misal listeners. Have a lovely day.
0: Thank you so much. हमारे regular listener हैं सलीम मेहर और लंदन से जो भी वक्त हो समय tune in करते हैं. अब ये जो phenomena आप देखेंगे आसमान पर समय दो planets जो Venus और Jupiter एक दूसरे के करीब आएंगे. कौन सा ज्यादा चमक रहा होगा वीनस वीनस ब्राइटर है जुपिटर समय वो जरा कम चमकेगा लेकिन इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ये कायनात का सबसे बड़ा सैयारा है तो ये स्लाइटली डिमर होगा पर सनसेट के आधे घंटे बाद एक घंटे बाद आप इनको देख सकेंगे कि इतनी करीब एक दूसरे के आ गए हैं
2: It's 11 We unlocked Gavar for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
3: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
4: East FM.
5: Kenya's premier Asian mix.
6: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो तैयार हो जाओ जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना डन
7: कैन
6: डन अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है मैंने पूछा बागों में बाहर है गर्मियों की निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है

0: है,
1: अरे पापा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है? ना,
2: गलती हो गई। और समिन सोमालिया में क्या हुआ है? समिन सोमाली एक शहरी, इनका नाम है अरतान। तारीख बनाने वाले थे सोमाली के शहरी, मगर नफरत के शोलों ने ऐसे होने नहीं दिया। क्या हुआ है, उमर अरतान वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहले सोमाली रेफरी होते चुन लिए गए थे। अफ्रीकी फुटबॉल में साल के बेहतरीन रेफरी थे ये, अफ्रीकन फुटबॉल में। अरतान को अमेरिका दाखले से रोक दिया गया है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने वीजा ही नहीं दिया। वजह, सामिन, क्यों वो सोमालिया में पैदा हुए थे? यही है वजह कि वो सोमाली हैं। सदर ट्रंप को यहाँ पैदा होने वाले ना पसंद नहीं है, तो उन्होंने रोक दिया है। जो उनको पसंद होंगे वही आएंगे। खैर, अब देखते हैं सामिन, आज का लफ्ज जो रेखा ने दिया है वो बाहों है, बाहें या बाहों, ठीक है? आज बाहों पर, ये प्लूरल में ही यूज कर सकते हैं, बाह तो नहीं हो सकती, बाहों में। तो सना ने क्या कहा है कि बाहों में बहार है, आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माई हस्बैंड। अच्छा, ज़रूर सना, गाना अपने शोहर के लिए। यासर, आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, व्हेन टू व्यू द वीनस एंड जुपिटर टुनाइट फॉर दोज इन नैरोबी, द बेस्ट टाइम टू स्पॉट देम इज 30 to 60 minutes आफ्टर सनसेट। ये मैंने अभी अभी कहा, गुरूब जब हो जाए ना, नीचे चला जाए सूरज, तब, बिफोर दे सिंक टू लो, आधा घंटा या एक घंटा। वॉट टू एक्सपेक्ट, यू विल सी द टू ब्राइटेस्ट पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द इवनिंग स्काई ब्लेजिंग साइड बाय साइड। वीनस विल अपियर एज द इंटेंसली ब्राइट प्लैनेट ऑन द राइट एंड जुपिटर विल बी ऑन द लेफ्ट। ये बता दिया यासर ने। और आरफा, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है, 30 से 60 मिनट गुरूब, सूरज गुरूब होने के बाद। और जतिंदर
3: जी, लाइन अप पढ़नी है, यानी अवॉइड लाउड एंड एग्रेसिव पर्संस, दे आर फिक्सेशन टू द स्पिरिट। इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Thank you.
2: बहुत अच्छे।

0: और अमीर अली राना गले लगाने के लिए बाहों का जरूर को बाहों का होना जरूरी है। अच्छा बाहों के बगैर ही मुश्किल है। ओके बाहें पसारना बीना पटेल नाउ दैट इज ओके बाहें फैलाना होगा बाहें पसारना चिराग पटेल बाहें पसारना इजीली एक्सेप्ट समवन ओके फिर ये मुहावरा है किसी को एकदम से तस्लीम कर लेना बाहों में भरना वेरी गुड हग समवन टाइटली चिराग पटेल फ्रॉम कैरेटीना दो हैं आज बाहें फैलाना भरत गंगाराम ओके सना बाहों में लेना जीजी जबीन हिरानी वाह क्या बात है सुपर्ब सॉन्ग्स ऑल माय फेवरेट और मंजुला विश्वकर्मा
1: परवीन जी दो मुहावरे दे रही हूँ एक है बाहें पसारना मतलब किसी के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार करना और दूसरा है बाहें चढ़ाना जब किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आए और लड़ने के लिए तैयार हो जाए उसके लिए बोलते हैं बाहें चढ़ाना
0: अच्छा ओके मुझे लगा कि स्लीव्स चढ़ाना होता है तो इसका मतलब कि आस्तीन चढ़ाना पर आपने जो कहा है हो सकता है
2: परवीन जी नमस्कार बाहों में तो काफी हो जाते हैं बाह पकड़ना बाहों का सहारा होना बाह थामना बाह मरोड़ना बाहों का बल दिखाना और भी बहुत है लेकिन बाकी को भी मौका मिलना चाहिए ऋतु गुप्ता लेकिन परवीन जी एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है बोलते हैं ना बाई बाई बाई बाई की भुजा होती है जब एक बाई की डेथ हो जाती है तो दूसरा बाई बोलता आज तो मेरी बाँह टूट गई ऋतु गुप्ता
0: वाकई क्या बात है दिस इज अ ब्यूटीफुल मुहावरा आज मेरा बाजू ही टूट गया कमाल है बहुत ही खूब रितु गुप्ता और कहा ये किसने हमें मेरे ख्याल से कोई लिंक भेजा है नहीं ये लिंक्स मैं अब इस वक्त प्रोग्राम में नहीं खोल सकती सो यू सेंड मी द एक्चुअल थिंग लिख कर दो दो हमने बाहों की बात की है ना मंजू डगर सो हाथ नहीं कर सकते हम बाहों पर बात कर रहे हैं अच्छा विद द वर्ड या मेरे पास थे एक आधे वो जरा ढूंढने में देर हो रही है आपने जो लिंक भेजा है थैंक यू सो मच इंडीड शारदा लेकिन वो ये है ना कि वक्त नहीं होता क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस या कॉल्स या आ जाती हैं
3: आदाब परवीन जी आज आपने बाहों पे कुछ मुहावरे पूछे हैं मेरे पास मुहावरा तो नहीं है लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ मिले तो बहुत हम सफ़र इस जिंदगी में मिले तो बहुत हम सफ़र इस जिंदगी में पर जो सुकून माँ की बाहों में था वो कहीं और ना मिला शुक्रिया रमेश अरिया
0: जी जी माँ की बाहों में गोद में उसकी गोद में जो सुकून मिला वाकई

0: अगर आप सिर्फ तुलसी हैं तो फिर क्या उनके साथ इतना ताल्लुक बढ़ाना, समझ, फिल्म में पीछे पीछे उनके हर बार उनके साथ दिखना, बातें करना, उनकी साथ नज़दीकी पसंद करना और फिर कहना कि मैं तुम्हारे शौहर की कुछ नहीं हूँ। ये गाना भी इनअप्रोप्रिएट था, कुछ था ही नहीं उसमें। अमीर अली राना, परवीन जी, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। मैंने अभी भी रियलाइज़ किया, माय नेबर इज़ अ रेगुलर पार्टिसिपेंट ऑन योर शो। नाम है कि नहीं है? अमीर अली राना। और मुनीर, इंग्लिश में वेटिंग विद ओपन आर्म्स, या दैट इज ट्रू। उर्दू में बाहें पसारे इंतज़ार करना, ओके, दैट इज़ अ मुहावरा, ठीक है, कि इंतज़ार इसमें है कि बाहें पसार के इंतज़ार करना। और जो कि फिल्म वंश, लता जी का एस पी बाला सुब्रमण्यम, देखती हूँ कि मिलता है कि नहीं इस वक्त में, लेकिन अगर ये हमारे टाइम पीरियड का, बताएं कौन से साल की ये फिल्म वंश है प्लीज़।
1: ईस्ट एफ एम The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
2: Lights, glamour, beauty and creativity. Kenya Brahm Sabha presents Bridal and Groom Hair and Makeup Competition Season 2 on Saturday, 13th June 2026 from 6:30 p.m. at the Kenya Brahm Sabha Hall, Third Parklands. Enjoy stunning makeovers, live entertainment, dinner, DJ party, raffle draw and games. Tickets, Kenya shillings, 1,000. Register now, 0721-974-444.
3: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: No one plays more of the beats you dance to, but East FM.
5: East FM.
4: Kenya's premier Asian mix.
5: Asian mix.

क्या जबरदस्त गाना है मोहम्मद साफी रफी साहब का. किसने कहा? शबीर अहमद. यस आई एग्री. कमाल की धुन थी. और समझ बाहों में मेरे ख्याल है बाहों का ज्यादा नहीं हो सकता इससे ज्यादा जितने आपने दिए हैं. इसलिए थोड़ी देर के बाद समझ मैं बदलूंगी क्वेश्चन को. तो अब पहले मुकेश, मुकेश के कितने फैंस हैं इंतजार कर रहे हैं तो ये भी सुन लीजिए.

इंग्लिश में एक मुहावरा है, अंग्रेजी में आजकल नहीं भी यूज करते पर है, मौजूद है, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। इसका मतलब क्या है? नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज, ये कब कहते हैं, इसका मतलब क्या है? नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। चलिए 0701106106, मैं ये नहीं कहूँगी कि गूगल मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है किसी ने सुना भी नहीं हुआ, इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा।

0: और ये डुएट लता और मुकेश की आवाजों में शबीर अहमद, व्हाट अ ब्यूटीफुल डुएट, बहुत अच्छे। और
1: हेलो प्री जी, मैं तो काफी भेजी है बाहर देखते, तुसी देख लो फिर सुना दो। थैंक यू जी।
0: अच्छा, एक सना ने कहा था बाहों का हार, दैट इज करेक्ट।
1: हेलो प्री जी, बाह ते है गया कुछ पहले, बाह होना मींस आसरा होना, बाह खड़ी करना किसी के हक विच राय देनी, बाह छड़ना दगा देना, बाह फड़ी दी लाज रखना। थैंक यू जी। हेलो प्री जी, होर भी है क्या कहते, बाह अड्डिया रह जाना, आस पूरी ना होनी, बाह चौड़िया करके मिलना, प्यार नाल मिलना, बाह लमकौंदे होना, खाली हाथ होना, बाह लम्मिया होना, दूर दूर तक पहुंच जाना, बहुत रसाई होना, बाह वट वट खाना, दूसरे ते गुस्सा कढ़ना।
0: कोई हाथ में चीज है नहीं, आ रहा है खाली हाथ, बहुत खूब। और रसिला, बिल्कुल करेक्ट, नॉट माई सर्कस, नॉट माई प्रॉब्लम मंकीज, नॉट माई मंकीज, आंसर दे दिया रसिला ने, करेक्ट। टीना, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है। मैं अभी दोनों के पढ़ती हूँ थोड़ी देर में। जबीन हेरानी, बाउंड्री सेटिंग मंत्र, इट मीन्स दैट समवन एल्स इज ओके, या करेक्ट जबीन हेरानी। चिराग पटेल, इन सब के मैं एक गाने के बाद समिन मैं पढ़ के आपको एक एक सुनाती हूँ।

और सिमरन कहते हैं कि आई एग्री कि नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज, पर कहते हैं कि आई एग्री बट सम दैट सम प्रॉब्लम्स is nobody's concern. Then why do they start a conversation on a topic not of their concern? They should mind their own business from the start. When a question is raised, then they run away. They say, it's not my problem. Okay. People spoil their own relations when they are found caught up. Look for an easy exit. Okay, not my problem. कहकर भाग जाते हैं लोग. ये बिल्कुल सही आपने कहा है. समिन, कुछ आप दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये हो जाएगा, तो दूसरा कहता है पता नहीं, करेंगे वो ये बात कि नहीं करेंगे, ये काम होगा कि नहीं होगा. तो एक उठ के कहता है, या हो जाएगा, when pigs fly. इसका क्या मतलब हुआ? आप बात कर रहे हैं कि will X happen, Y हो जाएगा, ये काम बनेगा नहीं बनेगा, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जीतेंगे when pigs fly. कब? ये कब होता है when pigs fly? मतलब क्या है? कब इस्तेमाल करते हैं इसको? इसका मतलब भी बता दें. 0701 106 106.

और आज सबसे पहले आंसर जो समय में अभी अभी मैंने कहा है व्हेन पिग्स फ्लाई तो जैनुल मोहम्मद वेल डन फर्स्ट कॉलर और पूरे डिटेल में बता दिया है और मैं आपके लिए ये पढ़कर सुनाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद और यहाँ पर हैं सिमरन ओके सिमरन अमीर अली राणा द जॉब अच्छा बिल्कुल अमीर अली राणा और आरफा दीन आप दोनों ने सही बता दिया लेकिन डिटेल्स के साथ और उस जैसी और एक्सप्रेशंस जो दी हैं वो जैनुल मोहम्मद ने दी हैं थोड़ी देर में आपको बता दी पर आप पहले ट्राई कीजिएगा

0: और जो कहा है हमारी लिसनर ने जैनुल मोहम्मद ने वो पढ़ देती हूँ, लेकिन बीना पटेल आपने कहा है असंभव, बिल्कुल सही, असंभव जो नामुमकिन हो, ये नामुमकिन का ही मतलब था। और जैनुल कहती हैं कि the expression when pigs fly means something will never happen or it's so unlikely it's considered impossible. Okay, the phrase is humorous. समझ, ये एक तरह का जोक है जब कोई कहता है when pigs fly, ये हंसी में मजाक में कहते हैं because pigs obviously can't fly, so it emphasizes how unrealistic the situation is. कहती हैं कि और भी expressions English में हैं जो when pigs fly जैसे हैं. Number one, not in a million years. मतलब एक क्या, एक मिलियन दस लाख, जी दस लाख सालों में ये नहीं हो सकता. Not in a million years. That will be the day. ये तो आपने कई बार सुना है, आप इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि वो ये काम कर देगी, that will be the day. दूसरा, when hell freezes over. समझ, hell को समझते हैं कि वो आग का है दरिया, लेकिन when hell freezes over मतलब वो तो होना ही नहीं है. तो this expression has been used in English for centuries as a way of joking about something that is extremely unlikely. Shanaz Bhatt ने भी कह दिया था, correct answer था. और Mrs. Dhanjal की सुन लेते हैं.
1: हाँ जी प्रेम जी, ये जो आपने पूछा है pigs, when pigs fly, इसका मतलब है कि that time will never come. एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने आपसे उधार लिया होगा तो बोलते आई थिंक ही विल पे यू, नो ही विल नेवर पे यू, मीन्स उस पिग विल नेवर फ्लाई. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे.
0: मिसेस धंजल गेव अ वेरी गुड एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कर्जा लिया है तो आप कहते हैं कि आपको लगता है कि वो मेरा कर्जा वापिस कर देगा, तो जवाब आता है वेन हेल फ्रीज इज ओवर, जब नर्क जम जाएगा ना, बर्फ बन जाएगा, तब वो आपका कर्जा वापस करेगा. बड़ी अच्छी एग्जांपल मिसी धंजल, थैंक यू सो मच. अमीर अली राणा, परवीन जी जस्ट अ जोक, व्हेन पिग्स फ्लाई इफ ओनली दे गॉट अ सीट इन केन्या एयरवेज, हाँ तब वो फ्लाई करेंगे. रितु गुप्ता, मे बी इट विल हैपन, मीन बी इट्स इट वोंट, नहीं नहीं वो ज़्यादा है कि इट वोंट है रितु, इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, आपका कर्जा डूब गया है.

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: ये लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।
1: नो।

0: रितु गुप्ता ने कुछ कहना है, चलिए।
1: तनिया जी, मेरे हस्बैंड पता है किसी को पैसा देते समय ये बोलते होते हैं, अगर किसी को पैसे देने हैं तो पहले थोड़ा 10 बार सोच लो, अगर दे दिए तो उसको भूल जाओ कि वो दोबारा आपको मिलेंगे। रितु गुप्ता।
0: हाँ रितु, क्यों लोग सीरियस नहीं लेते कर्जा लेते समय? उन्होंने, मुझे लगता है वो फील करते हैं उन्होंने ठग लिया है, फिर उसके बाद देना क्यों? ये तो मैंने ठगा इतनी आसानी से उसको, उससे कोई सीधा साधा ही होगा जो देगा कर्जा, वरना आप सही कहती हैं कि अगर कर्जा दिया है तो भूल जाओ।

0: समन, आते दिनों में ये दूल्हा दुल्हन का जो खेल है ना, ये भी खत्म होने वाला है। मैं आपको एक अदालती फैसले की खबर देने वाली थी, वक्त नहीं मिला, कल इंशाल्लाह दे दूंगी मैं। अमीर अली राना कहते हैं, एज यूजुअल यू डिडंट डिसअपॉइंट अस टुडे, द म्यूजिक द मुहावरा द ह्यूमर, उफ उफ उफ क्या बात है। अमीर अली राना, आप जैसे लिसनर्स हैं ना, करते हैं कॉन्ट्रीब्यूट।
1: परवीन जी, कुछ खास तो नहीं था लेकिन कुछ जरूर कहूंगा। कुछ लकीरों को लोग मुकद्दर समझ बैठे, कुछ लकीरों को लोग मुकद्दर समझ बैठे, वरना जिंदगी मेहनत सोच और फैसलों से बदलती है। ईश्वर तू भी बड़ा कारीगर निकला, ईश्वर तू भी बड़ा कारीगर निकला, खींच दी दो तीन लकीरें हाथों में और ये भोला आदमी उसे तकदीर समझ बैठा। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, धन्यवाद, मुलाकात होगी कल, थैंक यू।
0: इंशाल्लाह हो ना हो, कोई ओकेजन हो या जवाब ना हो, फिर भी आपको शायरी लानी। और नाज़नीन, आपने ठीक कहा है जो आप कहती हैं कि मैं भी रीतू के साथ इत्तफाक करती हूँ, रीतू के साथ एग्री करती हूँ। और सर, मेरा फेवरेट एक गाना है जो मैं चाहती हूँ आज सुनूँ और सुनाऊँ।

0: समन आगे आ रही हैं तीन घंटे के प्रोग्राम की मेजबानी करने के लिए नीलूफर उनके साथ रहिएगा मैं चलती हूँ हमारी और आपकी कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है दो गाने आखिरी आपके लिए और उम्मीद है आप बहुत इंजॉय करेंगे
1: मुबारक हो सबको समाये सुहाना

0: Rakhi Sawant turned her entire career with this song, because before this she was only doing like C-grade Bollywood films or something like item songs down south films. Hindi filmon mein usse koi chance nahi de raha tha, because for whatever reputation that she carried. And honestly speaking, it should not matter what she does in her personal life, but you know, what you do as work also matters. So holding on to that class, holding on to the top category in the industry is very important. So no one was giving her work ki nahi nahi iska to kaam hai, aisa नहीं करेंगे इसके साथ काम. देन शी पुट हर ओन मनी और शी गॉट प्रोबेबली समवन टू इन्वेस्ट एंड शी केम अप विद दिस रीमिक्स एल्बम व्हिच बिकेम सच अ बिग हिट एंड इट जस्ट ट्विस्टेड, जस्ट शी टर्न्ड अराउंड हर करियर एंड शी बिकेम वन ऑफ द टॉप यू नो डांसर्स और परफॉर्मर्स और इवन लाइक आइटम गर्ल जिसे कहते हैं, यू नो, इन मेनी मेनी टॉप यू नो नंबर वन फिल्म्स इन बॉलीवुड. एंड ऑफ कोर्स शी एक्टेड एज वेल. इफ यू रिमेंबर शी वाज इन मैं हूं ना एज वेल. फराह खान गेव हर अ वेरी गुड रोल, यू नो द सीन्स इन कॉलेज. कहते हैं ना कि दुनिया गिराएगी पर आप गिरना नहीं, आप अपने आप को उठाते रहो, अपने आप को शानदार बस बनाते रहो. रेट्रो टू राइट नाउ विद निलूफर ऑन ईस्ट एफएम, केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स.
1: ईस्ट एफएम,
2: ईस्ट एफएम. It's 1:21.
3: माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप मोहब्बत निभाता है. खुद कितनी भी तकलीफ में हो पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है.
4: But this Father's Day, let's celebrate Dad. What would happen if you gave him an apron and a spoon?
5: Let's find out in the biggest annual cooking battle, the East FM Koroga with Dad edition on 21st June.
6: It's simple. Form a team with your father and his friends, create a cool team name and psych song, and register with us.
4: It will be a day filled with food, fun, and fabulous prizes to win. Register by calling or sending us a WhatsApp message on 0701-106-106. Team registration is at 10,000 Kenya shillings. East FM Koroga with Dad. This 21st of June, it will be unforgettable.

My all-time favorite track when it comes to KK's voice. All right, what is that one Bollywood song that has truly inspired you? Like, okay, not just basic, but that, you know, your go-to song. आपको पता है कि मैं ये गाना सुनूंगी या सुनूंगा तो मेरी life set है. मतलब I can always pick up my, you know, कहते हैं ना, where you've left it and start life all over again. So Kamara is saying कर हर मैदान फतेह, and I've got Paresh जो आपने मुझे YouTube का ये भेजा है, लिंक भेजा है जो मैं खोल के देखती हूँ थोड़ी देर में. ओके, सो आई हैव गॉट अनदर मैसेज हियर सेइंग तुम मेरी दिल की धड़कन. ओके, इंटरेस्टिंग जयश्री. आई डोंट नो हाउ दैट मोटिवेट्स यू, बट इफ इट डज देन इट्स ग्रेट. और सिमरन कह रही इतनी शक्ति हमें देना दाता, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड सॉन्ग. इट्स अ क्लासिक ट्यून. चलो हम संडे को बजाएंगे पक्का. ओके, टेल मी व्हाट इज दैट वन सॉन्ग दैट हैज ट्रूली इंस्पायर्ड यू ऑन द डेज यू बीन डिसअपॉइंटेड, you know, you've been down to the dust and you needed that push. Just by listening to that song, you feel life starts all over again. That one particular song, let me know. Dil se keh do on 0711 046 106, or you can WhatsApp me on 0701 106 106.

0: This wonderful combination of Salman and Sushmita. It's playing for you on East FM, Kenya's premier Asian mix. This is Retro to Right Now with Nilofer only on East FM.
1: Spot the Bakwas.
2: On East FM, Kenya's premier Asian mix.
0: मुझे हमेशा बड़ी जल्दी रहती है बोलने की. एनीवेज, स्पॉट द बकवास में आज थोड़े से हम फिल्में, हम जैसे पहले दीपिका और रणबीर की बात कर ही रहते, रणबीर नहीं रणवीर, उनके पति देव, हाँ जी, तो आज उन पर भी बेस्ड है. ओके, सो आईव गॉट थ्री स्टेटमेंट्स बिकॉज आई डिड टॉक अबाउट दीपिका रणबीर एंड शाहरुख खान इन बियॉन्ड एंड बॉलीवुड. सो आई सेड व्हाई नॉट पिक अप समथिंग अबाउट देम एंड देयर करियर. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, शाहरुख खान वंस रिफ्यूज्ड अ रोल इन अ हॉलीवुड फिल्म बिकॉज ही वॉन्टेड टू फोकस on acting in India. Okay, second one, Deepika Padukone was the first Indian actress to present an award at the Oscars. And the third one, Ranveer Singh learned to play guitar in just 3 days for a movie role. Which one is true and which one is bakwas?
2: East FM.
1: East FM.
2: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
1: Lights, glamour, beauty and creativity. Kenya Brahm Sabha presents Bridal and Groom Hair and Makeup Competition Season 2 on Saturday, 13th June 2026 from 6:30 p.m. at the Kenya Brahm Sabha Hall, Third Parklands. Enjoy stunning makeovers, live entertainment, dinner, DJ party, raffle draw and games. Tickets, Kenya shillings, 1,000. Register now 0721 974 444.
2: Don't just listen, choose it. Request your song now on Retro to Right Now.

playing for you on East FM, Kenya's premier Asian mix. It's 3 p.m. We are getting into the next hour. But before that, I've got three statements. पहली बात तो रणवीर है, रणवीर बिल्कुल नहीं है, रणवीर सिंह की बात मैं कर रही थी. सो थ्री स्टेटमेंट्स. शाहरुख खान वंस रिफ्यूज द रोल इन हॉलीवुड बिकॉज ही वांटेड टू फोकस ऑन एक्टिंग. दैट्स एब्सोल्यूट बकवास. दैट मींस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकंड वन, दीपिका पादुकोण वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू प्रेजेंट एन अवार्ड द ऑस्कर्स. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड द थर्ड वन, रणवीर सिंह लर्न टू प्ले गिटार इन जस्ट 3 days फॉर अ मूवी रोल. एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू. दैट्स एग्जैक्टली नॉट specified what movie, but yes, he did mention learning guitar in 3 days. Full time he was with the teacher and it was for a particular role.

0: फ्रेंड्स टू एम केनियस प्रमोशन मिक्स दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल एंड हम बात करेंगे अबाउट यू नो व्हाट ओवररेटेड अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज ठीक है सो हु शुड वी ट्रस्ट मोर क्रिटिक्स और ऑर्डिनरी मूवी लवर्स सम फिल्म्स स्कोर इनक्रेडिबली हाई विद प्रोफेशनल रिव्यूअर्स बट लीव ऑडियंसेस कोल्ड Meanwhile, certain movies get torn apart by critics and still become fan favorites that people watch over and over again. Maybe the real review isn't on a website. It's whether you're still talking about the movie a week later. आजकल मूवी कब आती है सिनेमा में कब पिट जाती है पता भी नहीं चलता एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ मूवीज दैट आर बीइंग मेड आई विल शेयर अ मूवी दैट आई वॉच्ड एंड आई थॉट दैट यार दिस मूवी इज अमेजिंग व्हाई इज इट सो अंडररेटेड आई विल शेयर माय द मूवी दैट आई फील दैट इट्स अंडररेटेड एंड आप मेरे को अपना बताओ व्हाट इज योर एक्सपीरियंस डिड यू वॉच अ मूवी एंड यू थॉट ओह यू नो व्हाट This was underrated or you vice versa you know this was overrated yaar kya movie hai you know what I'm saying
1: This is East FM Kenya's premier Asian mix

0: तो ही मेरा प्लेइंग फॉर ईस्ट एफएम की इंस्पिरेशन मिक्स, दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल एंड बहुत सारे सही जवाब आ रहे हैं. करेक्ट आंसर्स आर कमिंग इन फॉर द मिक्स ऑफ बीट चैलेंज, जहां पे मैंने आपको पूछा था व्हिच इज दिस टू सॉन्ग्स दैट आई एम लुकिंग फॉर फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम. एंड आई हैव गॉट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नन अदर देन अमर. यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. व्हाई यार, ही इज नेम्ड ऑल द सॉन्ग्स ऑफ दैट मूवी, दैट इज एपिक. एंड यस, वी वर टॉकिंग अबाउट you know these movies that are underrated and overrated. Kuch aisi movies hain that have been overrated and some underrated actually. And ek underrated movie aisi thi, it was, how do I put it, initially when it released I thought it was underrated. I didn't watch it in the theater, but when I saw it I was like, oh man, this movie is interesting. And that was Drishyam, starring Ajay Devgan and Shreya Saran. I was like, okay, you know what, ye ho kya raha hai ye movie mein. And I followed it till the end. Abhi to part 2 bhi ban gaya hai movie ka and it's done so well. And I hear the part 3 is in the making. So Drishyam was one of those movies that I thought is an amazing movies. Ek aisi movie hai that taught us, you know, movies actually teach us a lot. And ek aisi movie hai that has taught me a lot personally. And I'm sure it has to you as well. And that movie is 12th Fail, starring Vikrant Massey and Medha Shankar in the lead roles. And I think 12th Fail was an amazing movie. You know, jaise banda struggle karta hai and then he goes on to become an IPS, IAS officer. It was just next level. So with that, आपके पास 5 मिनट हैं टू गेट नेम टू सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम. यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और अ वॉइस नोट ऑन 07011106106 और यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन 07110461106. एक्साइटिंग न्यूज आ रही है आपके लिए इन द सेकेंड आवर.
1: All the favorite songs you grew up listening to. And the premiere mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
1: Hey, yo, G-Funk.